0: This is East FM 102.7.
1: कनाडा सरकार सरहदी सुरक्षा लई सख्त कदम चुक रही है। ड्रग्स अते बंदूकां दी तस्करी नूं रोकिया जा रहा है, जिस नाल तुसी भाईचारे विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कनाडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
2: The station with the best music.
3: It's East FM.
4: It's East FM.
5: Feel the power. Feel the bass.
6: 102.7 FM.